आप सुन रहे हैं रेडियो नारा निर्मला नाइट्स, एंड मैं यही कह रहा था, क्या आपको घूमना फिरना और आउटिंग करना पसंद है? पसंद तो है ही यार, किसको पसंद नहीं है, मैं भी क्या सवाल कर रहा हूँ। तो गर्व कीजिए हमारे ट्रायंगल एरिया के दो शानदार होटलों की दुनिया में सबसे बेहतरीन मिशलिन गाइड्स होटल्स की यादी में जो है वो शामिल किया गया है, क्या बात है। तो यही मैं कह रहा था कि इट्स लाइक नथिंग इज लाइक दैट यार, सारी चीज़ें रैली एंड डरम के फेवर में है, इतनी अच्छी हमारी सिटी है एंड हम लोग एंजॉय करते हैं, वी आर लकी कि यार नथिंग इज़ लाइक दैट। और अभी तो 3.0 का तो सीन जो है वो आउट होने का ही है, जब 3.0 का सीन आउट हो जाएगा तो पता ही नहीं क्या क्या होने वाला है। एंजॉय किया आपने गाना और सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नारा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

वाकई में काफी बेहतरीन। और मैं यही कह रहा था कि रोजगार की एक नई नेशनल रिपोर्ट आई है जिसमें हमारे रैली शहर को पूरे देश में नंबर एक का प्लेस मिला है। क्या बात है, ये रैंकिंग यहाँ मिलने वाली बेहतरीन नौकरियाँ एंड अच्छी कमाई और रहने के शानदार माहौल की वजह से मिली है। तो बॉस गर्व से कहिए कि हम शहर के नंबर एक में रहते हैं। मतलब यार मैं सच में इतना खुश हूँ, इट्स लाइक रैली को तो बहुत प्राउड फील करना चाहिए। मतलब रोजगार के इसमें भी हमारा शहर जो है वो एक नंबर पे है, और क्या चाहिए। रैली का जो टेक अप है एंड यू नो लाइक नथिंग इज लाइक दैट, सारी चीज़ें आज तो रैली के फेवर में है एंड धर्म के फेवर में, तो तालियां तो बनती है। बॉस एंजॉय किया आपने, गाना सुनाने जा रहा हूँ आपको, अगला गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर।

क्या ही गाना था आप सुन रहे रेडियो नारा पर निर्भर नाइट्स एंड अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी काम के लिए NCDMV के चक्कर लगाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। नए अपडेट के मुताबिक लोकल ऑफिसेस में अब लंबी लाइनें जो है वो गायब हो चुकी है और वेटिंग टाइम बहुत कम हो गया है, यानी अब आपका काम मिनटों में हंसते खिलखिलाते हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी राहत भरी खबर है। तो यही है यार, मतलब सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, जितनी कम तकलीफ़ है जनता को हो वैसा हमारा प्रशासन जो है काम कर रहा है। तो एक सैल्यूट तो हमारे प्रशासन को बनता है। एंड रैली नंबर वन धर्म, नंबर टू यही चीज़ें दिमाग में दौड़ रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला एक गाना। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू।

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Armito on the mic, writing what I feel.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बनीरवादा नाइट्स, एंड अब वक्त हो चुका है कि मुंबई माया नगरी के गलियारों से कुछ बॉलीवुड की खबरें आपके सामने पेश करने का। तो पहली खबर यह है कि नेशनल फिल्म अवार्ड से जुड़ी हुई है। इस बार 72 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन जो है वो गुजरात में किया गया है। इस समारोह में साउथ के जो स्टार है ममूटी, देन बॉलीवुड के कार्तिक आर्यन और यामी गौतम को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए जो है वो अवार्ड दिया गया है। अपनी इस जीत पर कार्तिक आर्यन जो है वो बेहद भावुक नजर आए। एंड नेशनल अवार्ड मिलना, इट्स नॉट अ जोक यार, ये कितनी बड़ी चीज़ होती है कि एक कलाकार अपनी पूरी जिंदगी जो है वो समर्पित कर देता है उसकी कला के लिए और उसके प्रति उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।

अब सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्माणा नाइट्स एंड हम बातें कर रहे हैं बॉलीवुड की। तो अगली खबर यह है कि यूनो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सिनेमा घरों में रिलीज हुई मिर्जापुर द मूवी का जलवा बरकरार है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए 219 करोड़ रुपए से अधिक की जो है कमाई कर ली है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता बढ़ता बढ़ता ही जा रहा है। बस मैं यही कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, ओवर थिंकिंग एंजाइटी नहीं बढ़नी चाहिए, बाकी इनकम सोर्स तो बढ़ने ही चाहिए, बढ़ाने चाहिए। इनफैक्ट बहुत बार हम सोचते हैं कि ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, अरे यार करना चाहिए। नंबर ऑफ इनकम सोर्स यू नीड टू क्रिएट एट दिस मोमेंट, यही वो मौका है जो आपने कर लेना चाहिए। सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला एक गाना, बने रहेगा रेडियो नारा पर।

एंड ओटीटी लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, हुमा कुरैशी और सागिब सालिम के फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी दो हाई दो, इट्स लाइक अब जो है वो ओटीटी पर आ चुकी है। अगर आप घर बैठे कुछ देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एंड बहुत मूवी की चर्चा रही, बट आई डोंट नो रियली इट्स लाइक इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं और अच्छे नहीं भी है। सो अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं और OTT पे देखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वेल, कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? मौसम तो काफ़ी खुशनुमा हो रखा है एंड इस मौसम में एक गाना तो ऐसे बनता है जो कि आपकी एनर्जी को जो है वो बढ़ा देगा एंड आपके मूड को भी अच्छा कर देगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पनीर बना नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट्स एंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो 72 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बॉलीवुड हीरो को एक बहुत अच्छी पॉजिटिव अपील उन्होंने करी है। उन्होंने कहा कि जो फिल्म के अभिनेता होते हैं वो अभिनेता होते हैं उसके बाद अभिनेत्रियाँ होती है वो युवाओं के रोल मॉडल होते हैं, इसीलिए उन्होंने जो हेल्थ के लिए नुकसानदायी चीज़ें होती है उनके विज्ञापनों से बचना चाहिए। एंड उन्होंने बेहद खूबसूरत शब्दों में कहा, हीरो वही है जो समाज में रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं। हमारे सिनेमा और समाज के लिए ये कितनी अच्छी सोच है और वाकई में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो यंग रहते हैं लोग वो उनके लिए हीरो तो आइडल होती है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।

एक्स पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक्टर कुणाल खेमू की नई फिल्म वाइब को देखा और जमकर तारीफ करी है। उनका कहना है कि फिल्म काफ़ी कमाल की थी और एंटरटेनमेंट तो अप टू द मार्क था। वाकई इतना कमाल का था कि मैं क्या ही बताऊँ। लाइक ये वाइब जो फिल्म है इसमें एक्चुअल में वाइब है। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएँ काफ़ी अच्छी आ रही है। एंड जब खेल जगत के इतने दिग्गज खिलाड़ी ऐसा कह सकते तो वाकई में काबिल तारीफ तो है। कुणाल खेमू एक वर्सेटाइल है, ये उन्होंने साबित कर दिया है। एंड इस फिल्म में उन्होंने तरह तरह के किरदार निभाए हैं, कहानी भी उन्होंने लिखी है, एक्टर भी वही है एंड बहुत ही अच्छा डायरेक्टर भी वही है। सो इट्स लाइक नथिंग इज़ लाइक दैट। एंड कुणाल खेमू की पर्सनालिटी के बारे में बात करूँ तो जिम होलिक है, काफ़ी वर्कआउट करना पसंद है और हमेशा फिट नज़र आते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित वंदना नाइट्स।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा बनिर्वाना नाइट्स एंड नंबर दो का महा रिकॉर्ड। जी हाँ, हमारे ट्रायंगल से लेकर पूरे भारत और अब दुनिया भर में जिस गाने की गूंज है वो है फिल्म हनुमान अंश का पार्वती गाना। और रिकॉर्ड ये है कि ये भजन यूट्यूब की ग्लोबल म्यूजिक चार्ट में सीधे सीधे दो नंबर पर पहुंच गया है, वही अपने भारत में तो ये नंबर एक पर राज कर रहा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में दो नंबर का गाना बन जाना यूट्यूब पे, इट्स लाइक क्या ही बात करूँ यार। एंड गाना इतना खूबसूरत है, एंड जब से गाना रिलीज हो चुका है गाने ने अपनी वाइब तो बना कर रखी है। जो म्यूजिक एक्चुअली दिया गया है वो अप टू द मार्क है, एंड बहुत सारे कीड जो है ये गाने पे थिरकते हुए नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। एंड गणेश जी के विविध कार्यक्रमों में इस गाने पे बच्चे जो है वो थिरक रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा राइट्स।

मतलब इतना धूम मचा रहा है गाना कि मैं क्या बताऊँ। YouTube के इतिहास में पहली बार जब महादेव और माता पार्वती का कोई बुंदेली लोक भजन इस तरह पूरी दुनिया के ग्लोबल चार्ट्स को हिला रहा है। इस गाने को हर दिन लाखों व्यूज मिल रहे हैं और इसने सोशल मीडिया पर सारे सारे सारे सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। तो क्या बात है यार, गाना इट्स लाइक अप टू द मार्क है ही, और महादेव और पार्वती माता का ये गाना है यार, हिट तो होना ही है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडितवाना नाइट्स, एंड आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर एप्पल प्ले स्टोर से। आपको सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, यू विल गेट एन ऐप। ऐप मिलने के बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेएस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शो, सुन सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक देश और दुनिया के किसी भी कोने से। बस शर्त इतनी है कि आपका नेटवर्क जो है वो अच्छा होना चाहिए। थैंक यू सो मच रेडियो नायरा को इतना सारा, एंड निर्वाना नाइट्स को इतना सारा लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं।

वो गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन है चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स। एंड यार मैं क्या ही बताऊं कि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है। जिस तरह की उमस और गर्मी यार सता रही थी वैसा तो कुछ है नहीं, मौसम काफ़ी अच्छा है। एंड यू नो कुछ ना कुछ मैं हमेशा कहता हूँ कि ओवर थिंकिंग को कम करना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ का सही होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड विटामिन B12 मैं कह रहा हूँ, जो 90s के कीड है उन्होंने विटामिन B12 को अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए। एंड एक बार तो यू नो लाइक जो कमज़ोरी की वजह है वो मेन विटामिन B12 है। सो मैं यही कह रहा था, 7 से 10 का ये टाइमिंग आपके साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको निर्वाण नायरा के निर्वाणा नाइट सी शो पर। तब तक के लिए खुश रहिए। एंड आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। कल मिलूंगा आपको इसी वक्त, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek.

मंदिर के लिए जग में दीवाने बहुत से हैं। अरे मंदिर के लिए जग में दीवाने बहुत से हैं, पर राह में मंदिर के मैखाने बहुत से हैं। खातिर वसरार इन दीवर का कलाम था कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी थी। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो जनाबे वाला फिल्म का नाम था हीरा, 1973 की ये फिल्म थी और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की ज्योति करी साहिबा की फरमाइश पर। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया वो भी उन्हीं की फरमाइश थी, हसरत जयपुरी के कलाम के साथ शंकर जयकिशन की मौसीकी सूरज, वाह, 1966 की ये फिल्म थी। मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें। ज्योति करीर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी और मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश भी तो मौजूद है एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से। ज्योति करीर की फरमाइश आई थी मॉरिसविल नॉर्थ कैरोलिना से। बस मैं इतना कहूँगा, मैं कुछ इस पर कह नहीं सकता जो नगमा आपने भेजा है मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी और मोहतरमा कंचन लाल जी। तो उस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि अंग अंग सारा बह गया पर दिल यहीं रहा। देखें आप जरा गौर कीजिए क्या कहने चाह रहा हूँ। अंग अंग सारा बह गया पर दिल यहीं रहा, दिल देश से बाहर के काबिल नहीं रहा।

दिल ही तो है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ, अरे दिल ही तो है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ, हम बिक चुके हैं सारे के सारे तो क्या हुआ। खातिन हजरा शैलेंद्र का कलाम, शंकर जैक्शन की मौसीकी, श्री 420 1955 की ये फिल्म थी। मुकेश की आवाज़ में नगमा आपने समाप्त फरमाया, मेरा जूता है जापानी। मोहतरम जनाब चंचल लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और अब हम कहते हैं कि मोहतरमा समृद्धि ठाकुर पीछे कैसे रह जाएं, चैपल हिल से अपनी फरमाइश भेज रही हैं, क्या बात है, वाह। और मैं कहूँगा, दीवाना कहीं जाए क्यों पूछे किसी से पहले, अरे दीवाना कहीं जाए क्यों पूछे किसी से पहले, अगर पूछना था पूछता दीवानगी से पहले। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

कौवे के पास चाबी, कोयल है जेल में। समाज फरमाइए, देखिए, हालांकि ये शेर है मगर ये दोहे का रंग लिए हुआ है, क्योंकि दरअसल मैं दोहे भी लिखता हूँ, शेर भी लिखता हूँ, तो कभी कभी दोहा शेर की तरह, शेर दोहे की तरह हो जाता है। तो क्या हुआ, कौवे के पास चाबी, कोयल है जेल में, कैसा मजा है देखो कलयुग के खेल में। राजेंद्र कृष्ण का कलाम था ये, जिनकी शान में ये नगमा पेश किया गया। मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी, गोपी 1970 की ये फिल्म थी जिसका नगमा था, महेंद्र कपूर की ऊंची बुलंद और ताकतवर आवाज़ में। इसके बाद मोहतरमा पूर्णा गुप्ता साहिबा की फरमाइश भी मौजूद है, लेकिन मैं पहले शेर सुना दूं, देखूं ये शेर आपकी फरमाइश से कितना मिलता जुलता है या नहीं। गैरों के है हाथ दुपट्टा और पगड़ी जाने वाली है, गैरों के है हाथ दुपट्टा और पगड़ी जाने वाली है, और जो हंसते हैं वो ही लूटें अदा जमाने वाली है।

0: वो गुल के रंगो खुशबू पे बड़ी मंडरा रही है। मैं तवज्जो चाहूंगा, वो गुल के रंगो खुशबू पे बड़ी मंडरा रही है, ये तितली आजकल कागज से धोखा खा रही है। आनंद बख्शी का कलाम, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मौसीकी, दुश्मन नाम था फिल्म का, 1972 की ये फिल्म थी, और साथ साथ किशोर कुमार की आवाज के साथ ये कव्वाली की शक्ल में बहुत अच्छा लगा हमको, और चरणजीत तालजी मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश पर। और इसके बाद आपसे बात होगी फिर कि हम जैसे आपसे वादे करते हैं निभाते हैं, क्या आप भी हमसे वादे करते हैं और निभाते हैं? अगर ऐसा है तो बड़ा इंजॉय करेंगे अगले नगमों को। अगले नगमों में वादे वईद की बातें हो रही हैं, यानी प्रामिस, वचन या कुछ भी तरह का वादा। वी आर योर होस्ट अफरोज स्टार जान कॉलवेल एंड रवि चिरीकुड़ी, 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नारा की पेशकश।
1: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
2: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

वादे निभाना मोहब्बत नहीं है, वादे निभाना मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत में कोई तिजारत नहीं है।

0: तुमने हमारे दिल को गिरफ्तार कर लिया। अरे तुमने हमारे दिल को गिरफ्तार कर लिया, वादा करो या ना करो, आंखें तो कह गईं।
1: You are listening to Geet Bazaar।

साजन न जाने वादा निभाना। अरे साजन न जाने वादा निभाना, बनाना था मलका बनाया दीवाना।

वादे की अहमियत में दिल ले गए हमारा, वादे की अहमियत में दिल ले गए हमारा, दिल दीजिए ना दीजिए वादा तो कीजिए।

सूरत को बिना देखे सूरत ही नहीं कोई। समाज फरमाएं कि कोई रास्ता नहीं है बिना देखे, इतनी बेचैनी होती है। सूरत को बिना देखे सूरत ही नहीं कोई, और वादे से बांधने की जरूरत ही नहीं कोई।

जिद मान के तुम्हारी दिल जो दिया, अरे जिद मान के तुम्हारी दिल जो दिया, और शाम से पहले ही तुमने खो दिया।

वादा नहीं करते हैं निभाने की नीयत से। अरे वादा नहीं करते हैं निभाने की नीयत से, गर नीयत हो निभाना तो वादा नहीं करते।

वो वादे पे वादे किए जा रहे हैं, अरे वो वादे पे वादे किए जा रहे हैं, हम उनके यकीन पर जिए जा रहे हैं।

वादा किया था तुमने आओगे दिन ढले, अरे वादा किया था तुमने आओगे दिन ढले, सूरज तुझे कसम है चला जा तले तले।

मैंने निभाया वादा, तुम भी तो निभाना। अरे मैंने निभाया वादा, तुम भी तो निभाना, इस ताज के बागों की खुशबू में चली आना।

वादे तो किए मैंने, निभाए नहीं गए। ये भी शेर आप सुने, देखें मजा आएगा आपको। वादे तो किए मैंने, निभाए नहीं गए, जब से तुम्हारी बज़्म में आए नहीं गए। आने का वादा तो किया जा सकता है, लेकिन जाने को दिल नहीं चाहता है, जैसे कि आपकी बज़्म से जाया नहीं जाता, क्योंकि दिल भरता नहीं। दो मिनट दो घंटे में गुजर गए, देखिए आप। चलते चलते मोहतरम जनाब, दामोदर पांडे की फरमाइश रामनगर से आई हुई है वादे के बारे में, तो क्यों ना उसको हम सुनाते जाएं। वी आर योर होस्ट अफरोज ताज, जॉन कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। और दिल तो चाहता नहीं है कि अब यहाँ से जाएं, तो मैं कहूँगा वही पुरानी चार लाइनें मुझे याद हैं। दिल नहीं चाहता कि जाएं इस जवां महफिल से हम, अरे दिल नहीं चाहता कि जाएं इस जवां महफिल से हम, क्या करें ताज और भी वादे निभाने हैं मगर, जा रहे हैं आपकी महफिल से इस उम्मीद पर, फिर बुलाओगे हमें तुम अपनी यादें भेज कर। See you later, alligator, in a while, crocodile, keep in touch, magar much. Mohabbat, zindabad.

जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: Hey guys, hit the subscribe button right here to catch more of These Shockies.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

क्षीण घट में जोत है जोत में घट जो खोजे बाहर वो भीतर ही बसे ओम शिव गोरक्षक।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

morning. Hello, hi, namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning, morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But speaking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabri sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइट. पका लो कल.

0: barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिख गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। वेलकम आवर ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the MCDU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिसमस करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल के लिए जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देश पक्का लोकल।
1: तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू तो?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक. वेल मॉरिस विले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है. इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विले, कमिंग सून राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। विल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन विद मोर देन 60 वेंडर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। This family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइगा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for the 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक. पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है. वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है. वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us.
1: Pure Vegan Cafe turns 5. 5 years of great food, amazing people and 100% vegan goodness. And we couldn't have done it without you. To celebrate, we are making September extra special. 5 years, 5 weeks, 5 new specials, 5 winners. And every order gets you entered to win a $25 Pure Vegan Cafe gift card. End of each week. A new creation unlocks every week with weekly giveaways and a chance for you to decide which special earns a permanent spot on our menu. The celebration starts September 1st. Thank you for an incredible 5 years.
2: Shopping
1: now,
2: for your
1: let's have
2: car?
1: Some fun.
2: LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles, backed by our trusted network of local dealerships. With expert service, convenient locations, and flexible buying options, LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com.
3: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
4: ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM एंड 99.9 FM, SD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक्स, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन, जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

Blossom Blossom Gana, aap ne suna on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 49 AM, 99.9 FM, LG3 for Telugu, Naira se main hoon aapki apni Monica, aur aap sun rahe hain Triangle Rooms and Talk. हमारे ट्रायंगल में जॉन पार्डी इन कॉन्सर्ट सेलिब्रेट होने वाला है. कंट्री म्यूजिक स्टार जॉन पार्डी इज ब्रिंगिंग हिज सिग्नेचर हॉन्की टॉन्क एनर्जी टू द किड रिवर स्टेडियम ऑन जुलाई. कांट मिस द नाइट अंडर द लाइट नोन एज मिस्टर सैटरडे नाइट. पार्डी इज सेट डिलीवर एन अनफॉरगेटेबल शो पैक्ड विद द चार्ट टॉपिंग एंड टॉपिंग इट इज हाई एंड एनर्जी परफॉर्मेंसेस. Whether you are backbone in wound for the summer or just looking for the perfect night out, this is your excuse to grab your friend and make it night to remember. मजा आने वाला है इस प्रोग्राम जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइन पता देसी पता लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

वो गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। I'm a hustler, A1, lifestyle A1, ऐ मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल, कटोर मरावा के तिछोरे करनाल, के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।

0: माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल एंड डॉट।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiyega nahi, sundariya Monica ke saath video naira, pata desi, pata local.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल ट्यून्स एंड टॉक कहा धारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: ये ऑसम गाना आपने एंजॉय किया और 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 AM एंड 99.9 FM, SD 340 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डोंट एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्स शो हंटर जंपर फोर्थ डिवीजन सेलिब्रेट होने वाला है। द हंटर जंपर डिवीजन ऑफ ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्सेस शो फोकसेस ऑन फीट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विद द फोर्थ जंप ऑफ द टर्न दैट हॉर्सेस एंड राइडर्स हैव टू नेविगेट। This particular part of the show serve as preliminaries and final that show shortly after. Participants decorate their stable for added flair. Food truck will be offered delicious treat and vendor their theme wares. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: 맞아요.
1: 야, 천지.
2: होने वाला है ईच वीकेंड इन जुलाई पॉटर एंड स्टूडियोज विल हैव सेवरल इवेंट टेकिंग प्लेस फॉर द ग्रेट एक्सपीरियंस इन सी ग्रूव एरिया फ्रॉम क्लीन ओपनिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड सम हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन प्ले We hope you will plan your visit and first-hand look at the process of making pottery. Some pottery studios may require a reservation to be included in the activities, so you will need to work directly with each site individually. We look forward to visit to a C group. मजा आने वाला है जिनको सच में इंटरेस्ट है पॉटरी में जरूर विजिट कीजिए फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा
3: पक्का देसी पक्का लोकल 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM एंड 99.9 FM HD3 for Telugu, रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप। या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल, अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल, एंजॉय।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: हा एक चिमणा चिवा चिवला, माझा साजण जागा झाला हो, सूर्य उगवला। एक चिमणा चिवा चिवला।

0: Join the Morrisville Chamber of Commerce on Wednesday, October 1st from 4:30 to 6 p.m. for Life Sciences After Hours Unplugged at Horseshoe at the Hub RTP. Network with industry professionals, innovators and leaders and enjoy a lively panel and Q&A on the power of storytelling in life sciences. Visit morrisvillechamber.org to register. Media partner, Radio NIDA.
1: Movie dekhi thi, pav bhaji khai thi. पंजी गए थे
2: रॉन्ग 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है अरे भूली गया आ डेट तो याद रखवानी छोए गरबा लवर्स आर यू रेडी ऑन ऑक्टोबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स Dance to the incredible beats of Amruta Manke and Nimesh Nagar with live music, delicious food, family, friends, and Raat Bhar Garbani Moj. Early bird tickets only until September 7th.
3: Tickets on Sulekha or check the Rhythm and Ras Flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram, or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.
4: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी, तुझे नहीं पता क्या?
2: में उतने ही सच्चे जितने हैं झूठे।
3: WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 1490

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: छत्त पक्षियां रंगादी धुप बरसाती सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया।
1: वो दोनों को ही चाह।

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आरजे पराग. 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश. कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? आज की शाम के बारे में मैं कहूँ तो ये शाम जो है ये काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रही है. एंड इस प्यार भरी शाम में अगर कुछ अच्छे गाने आप सुनते हैं और उसके साथ अगर एक अदरक की प्याली आपके हाथ में हो तो मज़ा ही आ जाएगा. एक गर्म चाय की प्याली हो, अब आपको पिलानी वाली है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक गर्म चाय की प्याली तो डेफिनेटली चाहिए. तो मैं यही कह रहा था कि आपने ट्यून इन किया है रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स ये शो, और मैं सुनाने जा रहा हूँ इस शाम का पहला ये गाना. बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल.

रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी गाने की धुन याद तो रहती है बट जुबा पे नहीं आता ये किस गाने की धुन है। जी हाँ, ये भी एक अलग लेवल का मतलब है यार। मतलब आप कुछ ना कुछ करके यूट्यूब पे डालो, कुछ ना कुछ मिलता जुलता डालो तो फिर धुन समझ में आती है, होता है ऐसा। तो अगली खबर यह है कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म मिर्ज़ापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। पंकज त्रिपाठी और अली फैजल की इस फिल्म ने महज एक हफ्ते में दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई जो है वो शानदार तरीके से की है। मतलब क्या ही बताऊँ मैं, जो मिर्ज़ापुर के फैंस हैं और जो फैन नहीं भी है, जिन्होंने सीरीज नहीं देखी थी वो मूवी देख रहे हैं अभी, और मूवी देखने के बाद शिफ्ट हो रही है सीरीज के ऊपर, तो ये चीज़ चल रही है। तो मूवी के बारे में तो अच्छा ही, मैंने देखी नहीं है लेकिन वेरी सून आई एम गोइंग टू डू प्लान टू वॉच मिर्ज़ापुर द मूवी।

जैसे ही सोशल मीडिया खोलता हूँ, बस 80s का ट्रेंड जो है वो हर तरफ छाया है, हर कोई फॉलो कर रहा है। थैंक यू सो मच चैट जीपीटी, इतना अच्छा आपने ट्रेंड लाया है। और मैं कह रहा हूँ कि फैशन, कपड़ों का फैशन जो है वो 80s का ही इतना अच्छा था, 80s का फैशन ही वापस से आना चाहिए। लगता था कि कुछ तो भी हम अच्छा पहन रहे, अब का फैशन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट। 80s का फैशन जो था, मैं तो कहता हूँ हेयर स्टाइल का भी ट्रेंड, कपड़ों का भी ट्रेंड, जूतों का ट्रेंड, वॉचेस का ट्रेंड, वही आना चाहिए। बहुत मज़ा आ रहा है देख के। और ये ट्रेंड वाकई में मुझे तो मेरा फेवरेट ट्रेंड है आज तक का, जितने भी ट्रेंड निकले हैं ये ट्रेंड तो मेरा बहुत फेवरेट रह चुका है। और क्या आपने भी 80s के ट्रेंड को फॉलो किया है? अगर नहीं किया है तो करके देखो, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल कैसे चल रही है आपकी शाम, प्लीज़ लेट मी नाउ।

हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड 80s का ट्रेंड जो चैट जीपीटी ने सेट कर दिया है, मजबूर कर दिया है यार 80s के ऊपर बात करने के लिए। तो 80s का दौर था डिस्को कल्चर। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर ने देश में डिस्को डांस और कल्चर को घर घर तक पहुंचाया था। फिर वो जैकेट्स रहे, उनके डांस की स्टेप रहे, उनके बोलने का अंदाज रहे। 80s मतलब डिस्को, ऐसा कह सकते हैं। एंड संगीतकार बप्पी लहिरी भारी सोने के आभूषण और चमकीले कपड़े पहनकर अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके थे। मतलब 80s के जो डेज थे वो गोल्डन डेज थे, ऐसा कहने में हर्ज नहीं। जिस तरह से बॉलीवुड 80s के टाइम में उभर रहा था, ओ माय गॉड, ये तो अलग लेवल पे ही था। एंजॉय करते अगला एक गाना एंड क्या करूँ यार, ऐसा लग रहा है कि 80s के लाइक टाइम मशीन से जाके बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा आज मुझे लग रहा है।
1: म्यूजिक लाउड।